होए। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जैन दैन करके कीती रात, खासम विसार है ते कम जात, नानक नावे बाज सुनात। राग गूजरी महला चौथा, हर के जान सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम, सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रगाश। मेरे मीत गुरदेव मोह कौ राम नाम प्रगाश, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास राव। हर जन के बड़ पाग बडेरे, जिन हर हर शरदा हर प्यास, हर हर नाम मिलै त्रिपतास है, मिल संगत गुण प्रगाश। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगाश। राग गूजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम, जा आहर हर जियो परया। सहल पत्थर में जन तो पाए, तां का रिजिक आगे कर तरया। मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे काष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनिता, कोई ना किसकी तरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काही मन पौ करिया। ऊडे ऊड आवै सह कुसा, तिस पाछे बचरे शरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सब निधान दासाष्ट सुधान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा भरिया। राग आस्था महला चौथा, सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगमा पारा। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी, हर सच्चे सिरजन हारा।

पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा हमरे दोष्ट सब तुम काव हो आप हाथ दे मुहे बचाव हो सुखी बसै मोर परिवार सेवक सिख सब करतार मोर अच्छा निज कर दे करें सब वैरन का आस करें पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दाय मुझे उभरे आए मरण काल का त्रास निवरे आए हू जो सदा हमारे पछा सरिया तुझो करे हो रक्षा राख ले हो मुझ रखनहारे साहिब संत साहे प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए सब जुग अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जश्न बजायो आद अंत कै अवतारा सोई गुरु समझे हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा आजन आप सवारी सेवकन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोहम्मद कियो कड़कड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते गुंजर स्थूला सब पर कृपा दृढ़ कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कड़ कट के बट बट की जान जावोद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपार जब या करख करत हो कब हो तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझो चारे तुम सब ही तेरे।

मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। सरी असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तो बखान्यो। दोहरा सगल

0: अंतर्यामी पुरख विदाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मोककार संतन की धूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तुदया गए अरदास हमारी जियो पिंड साधु तेरा कहो नानक साहब तेरी बड़ियाई कोई नाओ न जाने
1: महान कृपा हुई महान कृपा सरकार आप जी के पावन गुरु की पहल सेवा हुई सुंदर सब बन जाप होया सबकी सेवा हो रही हुई थोड़ा लिखना कर रहे हैं गुरुद्वारा करने का सेवा करने का बल उठना जी जैसा करना प्यार नाम कर रहे हैं करना जी सही प्यारे मिलता हूँ जिसका मेरा पवित्र नाम सरकार मेरे सुबह

0: देखा जिस पागा वाले ने उसने अपनी सिर्फ सलाह बख्श देती है। गुरुदेव कहने लगे आम बंदा ना समझो, वो पातशाह ही पातशाह। लो ये गुरु नानक दे घर की सौखी सिख्या गई, घर मिलया है रहो सुख लो पर आखो ओदी दात है। जे परिवार विच सुख है तो आखो ओदी दात है, मतलब कहने तो कि हर वेले ओदे शुकराने विच जुड़े रहो। जिसनो बख्शे सिफत साला नानक पातशाह।
1: पिछलियां दो पौड़ियां विच एक एक पंक्ति आप नाल सांझी करां। पहली सी कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनो ना विसरै। फिर जो उस तो अगली पौड़ी पढ़ी उहदे विच अखीर विच आया नानक नदरी करमी दात, अकाल पुरख वाहिगुरु बख्शियां करदा है। इस पौड़ी दे विच बख्शियां दा जिक्र है कि किन्नी किन्नी बख्शिश कीती, की कुछ नहीं दिता, अकाल वड्डा दाता कह दिता। और वड्डा दाता नूं ही तुसीं चंगी तरह समझ लो तो इहदे विच बड़ा कुछ आ जाएगा। जिहड़ा कोई तुहानूं चंगी चीज़ दे दे ना, बड़ी कीमती चीज़ दे दे, असीं कहिंदे बड़ा वड्डा बंदा, अमीर बंदा है। सूरज किन्नी रोशनी तुहानूं दे रहा है, अज कोई बल्ब है किन्नी रोशनी तुहानूं दिंदा है, तो इहदा मुल तुहानूं देना पैंदा। हर महीने बिल आ जांदा है, इह पखा यह बिजली दे करके चल रहा पखा, यह बिजली कह लो जां पखा कह लो, तुहानूं हवा देंदा है, हर महीने बिल आ जांदा है। पर अकाल पुरख वाहिगुरु किड्डा वड्डा दाता है, उन्हें किड्डा वड्डा बल्ब लाया होया सूरज के रूह में, रात नूं तुहानूं नाइट लैंप का काम दे रहा है चंद्रमा, तो इस तरह हवा चल रही है, तो जे कि रब बिल भेज दे भी दे देंगे असी। किड्डा पावर होएगा, तो 100-200 वाट दे होंगे, वो किड्डे वाट का होएगा, कितने बिल देवे। एक एक चीज नूं महसूस करिए फिर असीं कहांगे वड्डा दाता। पर कहिंदे साडी भी लियाकत वेख लो। तीन प्रकार के लोग ने जो दाता लैके तो की काम करते हैं। एक तो वह ने केते लै लै मुकर, रब ने सानू की दिता जी, रब ने तो मैंने कुछ दिता ही कोई नहीं, किथे मैंने जन्म देता, इस देश में अमेरिका भी दिता तो बल्ले बल्ले ही हो जानी सी। क्यों हाथ दिते चेते नहीं, अखां दित्तियां चेते नहीं, जे लत्तां तोड़ना फिर चंगा रह जाना सी, मणा दा काणा भेंगा जां मणा दा फिर चंगा रह जाना सी, दंद मूंह च हुंदे ना फिर चंगा रह जाना सी। इन्हां दातां लैण दे बावजूद भी मनुख यही आखी जांदा है कि मैनूं दित्ता कुछ नहीं। ओ तेरे सिर दे उत्ते मां है, तेरे सिर दे उत्ते प्यो है, जे जमदे खो लैंदा फिर जो तू हैगा वह भी नहीं सी रहना। इस करके पहला महसूस करिए कि रब ने बहुत कुछ दिता। एक श्रेणी इन्नी निकम्मी है जिहड़ी लै लैके मुकर ही जांदी कि रब ने दिता ही कोई नहीं। दूजी केते मूर्ख, जो दिता उहदे विच ही खचत हो गए, बस धियां दित्तियां पुत्र दिते उहदे विच खचत, धन दौलत दित्ती उहदे विच खचत, गुरुद्वारे जाण दा चेता नहीं, पाठ करन दा चेता नहीं, 24 घंटे माया ही माया ते माया ही। बस ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਭੋਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਈਏ। ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਦਮਾਰ, ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਥੇ, ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਗੜੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ, ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ, ਬੰਦਨਾ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਆਖ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹੀ ਕਹੋ ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨੇ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ जिसनो बख्शे सिवत साला नानक समुंद शाह सुल्तान वो पातशाह ही सी पर जे सिवसला मिले तो पातशाही पातशाह किन्ने पातशाह पातशाही एक आंदा पातशाह का पातशाह एक एक दुनिया में जिन्ने भी पातशाह ने उन्हों का भी पातशाह इस करके जे सिवसला सानू मिल जाए तो अस कि वे हो जाएंगे इस करके इस बाणी तो सिक्ख्या लईए असी हमेशा दोए हाथ जोड़ के यही मंगिए कि जे तू त्रुटा है ना जे तू कृपा करनी है तो यह मूँह ते दात पा कि मैनू तू ना विसरे
2: अमूल गुण अमूल व्यापार

अमूल पाए अमूला समाहे, अमूल धर्म अमूल दीवान, अमूल तुल अमूल परवान, अमूल बख्शीश अमूल निशान, अमूल कर्म अमूल प्रमाण, अमूलो अमूल आखिया ना जाए,

मुख ना पावे, बिन गुर मुक्त न आवे जावे। मूल मंत्र हर नाम रसायन, कहो नानक पूरा पाया। सच बिन पव जल जाए ना तरिया, यो समुंड अथाह महा बिख भरिया।

बिन सुख पाया, उपजह बिन सह बंधन बंदे, हम मैं माया के गल फंदे, जिस राम नाम नाही मत गुरमत, सो जमपुर बंद चलाया, गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाईऐ, बिन गुर राम नाम क्यों त्याईऐ, गुरमत लेहो तरो भाव दुत्तर, मुक्त पए सुख पाया, गुरमत कृष्ण गवर्धन तारी, गुरमत शायर पाहन तारी, गुरमत लेहो परम पद पाईऐ, नानक गुर परम च

तह हर जप अकुल निरंजन पाया। गुरमत पंच सखे गुर पाई, गुरमत यगन निवार समाई। मन मुख नाम जपो जग जीवन, हृदय अंतर अलख लखाया। गुरमुख बूजै शब्द पतीजै, उस्तत निंदा किस की कीजै। चिन्हो आप जपो जगदीसर, हर जगन्नाथ मन पाया। जो ब्रह्मांड खंड सो जानो, गुरमुख बूजो हो शब्द पछाणो। कट कट भोगे भोगण हारा, रह अतीत सबाया। गुरमत बोलो हर जस सूचा, गुरमत आखी देखो ऊचा। सर्वणी नाम सुने हर बाणी, नानक हर रंग रंग।

हर अंतर हर रस पाया निस दामन ज्यों चमक चंदायन देख एहन सजोत निरंतर पेख आनंद रूप अन...

लिव लागी सब त्रे पवन ब्रह्म सबाया अमृत रस पाए तृष्णा पहु जाई अनुभव पद पावे आप गुआई ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया अदृष्ट अगोचर नाम अपारा अतरस मीठा नाम प्यारा नानक को जुग जुग हर जस दीजै हर जपिया अंत ना पाया अंतर नाम प्राप्त हीरा हर जपते मन मन ते तीरा दुकट कट पौ पंजन पाईऐ बहुड़ जन्म ना जाया भगत हेत गुर शब्द तरंगा हर जस नाम पदार्थ मंगा हर पावै गुर मेल मलाई हर तारे जगत सबाया जिन जप जपयो सतगुर मतवा के जम कंकर काल सेवक पगता के उत्तम संगत गत मित उत्तम जग पौजल भारत राया एहो पौजल जगत शब्द गुर तरिया अंतर की दुबदा अंतर जरिया पांच बाण ले जम को मारै गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाईऐ शब्द सुरत बिन आईऐ जाईऐ नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरै भाग मलाया निरपौ सतगुर है रखवाला भगत परापत गुर गोपाला तुन आनंद अनाहद वाजै गुर शब्द निरंजन।

नाम रतन पाया, मनसा मार मन माहि समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है, सतगुर सेवे आप गवाए, मिल प्रीतम शब्द सुख पाए, अंतर प्यार भगती राता, सहज मत

मारू महला तीजा एको एक वर्त है सब सोई गुरमुख विरला बूझे कोई एको रव रहया सब अंतर तिस बिन अवर ना कोई है लख चौरासी जी उपाय ज्ञानी ध्यानी आख सुनाई।

लाए लए सो लागे, गुर प्रसादी जमका पौ भागे। अंतर शब्द सदा सुख दाता, गुरमुख बूझे कोई। आपे मेले मेल मलाए, पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए। आन दिन भगत करे दिन राती,

मैं बाहर तृष्णा अग्न निवारी शब्द चीन सुख होई काया कटांब मोह ना बुझै गुरमुख होवै ता आखी सूझै अनबिन नाम रवै दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है मनमुख तात दूजै है लागा जनमत की नाम वो अभागा।

शिवक शब्द संजापे सच्चा शब्द रवे काटे अंतर रसना रस चाखे सच सोई है होमे मारे शब्द निवारी हर का नाम रखे उर तारी एक सबिन हो होर ना जाना सहजे होए सो होई है बिन सतगुर सहज किने नहीं पाया गुरमुख बूजे सच समाया सच्चा सेव शब्द सच राती हमें शब्द खोई है आपे गुणदाता बिचारी गुरमुख देव पक्की सारी नानक नाम समाव सच है साचे ते पत होई है मारू महला तीजा जग जीवन साचा एको दाता गुर सेवा ते शब्द पछाता एको अमर एका पतशाही जुग जुग सिरकार बनाई है सो जन निर्मल जिन आप पछाता आपे आए मिलिया सुख दाता रसना शब्द रती गुण गावे दर साचे पत पाई है गुरमुख नाम मिले वडियाई मनमुख निंदक पत गवाई नाम रते परमहंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई है शब्द मरे सोई जन पूरा सतगुर आख सुनाए सूरा काया अंदर अमृत सर साचा मन पीवे पाए सुपाई है पढ़ पंडित अवरा समझाए घर जलते की खबर ना पाए बिन सतगुर सेवे नाम ना पाई है पढ़ था के शांत ना आई है एक भस्म लगाए फिर पेख तारी बिन शब्द हम किन मारी अन दिन जलत रह दिन राती परम पेख परमाई है एक ग्रह कटम मह सदा उदासी शब्द मुए हर नाम निवासी हर दिन सदा रह रंग राती तै पाए भगत चित लाई है मनमुख निंदा कर कर विगुत्ता अंतर लोभ भौंकै जिस कुत्ता।

बिन सतगुरु को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते निरंकारी। जिसनो आप मलाए सो बूझै, भगत पाए पहु जाई है। इस्नान दान करह नहीं बूझ, एक मनुआ मार मन स्यों लूझ। साचै शब्द रते एक

पूरा भाग गुर शब्द पछाता शब्द मिले से विछड़े नाही नदरी सहज मलाई है हम मैं माया मैल कमाया मर मर जमह दूजा पाया बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई मन देखो निवलाई है जो तिस भावै सोई करसी आप हो आ ना किस होसी नानक नाम मिले वडियाई दर साचै पत पाई है मारू महला तीजा जो आया सो सब को जासी दूजे पाए भादा जम फासी सतगुर राखे से जन उबरे साचे साच समाई है आपे करता कर कर वेख जिसनो नदर करे सोई जन लेख गुरमुख ज्ञान तिस सब किस सूजे अज्ञानी अंध कमाई है मनमुख सहसा बूझ ना पाई मर मर जम्मै जन्म गवाई गुरमुख नाम रते सुख पाया सहजे साच समाई है तंदे तावत मन पया मनूरा फिर हुए कंचन पेटे गुरपूरा आपे बख्श लए सुख पाए पूरे शब्द मलाई है दुर्मत झूठी बुरी बुरियार औगण यारी औगण यार कच्ची मत फीका मुख बोलै

पाहु ना जाने मूरख बिन गुर बूझ ना पाई। दुर्मत खोटी खोट कमावे सिंगार करे फिर खसम ना पावे। गुणवंती सदा पिर रावे सतगुर मेल मलाई। आपे हुक्म करे सब वेखे इक ना बख्श लए तुर लेखे। आन दिन नाम रते सच पाया आपे मेल मलाई। हो मैं तात मोह रस लाई गुरमुख लिव साची सहज समाई। आपे मेले आपे कर वेखे बिन सतगुर बूझ ना पाई। एक शब्द विचार सदा जन जागे एक माया मोहे सोए रहे अपागे। आपे करे कराए आपे होर करना किछु ना जाई। काल मार गुर शब्द निवारे हर का नाम रखे उर तारे। सतगुर सेवा ते सुख पाया हर कै नाम समाई। दूजे पाए फिरे देवानी माया मोहे दुख माहे समानी। बहुते पेख करे नह पाए बिन सतगुर सुख ना पाई। किसनों कहिए जा आप कराए जित पावे तित राहे चलाए। आपे मेहरवान सुखदाता जो पावे तिवें चलाए।

बूंद पवै बिनसै तहत न लागै बारा कंचन काया गुरमुख बूजै जिस अंतर नाम नवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पूजन सच आधारा सदा त्रिपत पवित्र है पावन जित घट हर नाम नवासी हौ तिन बलिहारी जो साचै लागे हर गुण गावह अन दिन जागे साचा सूख सदा तिन अंतर रसना हर रस

पुर सब सच दिखाया सच्चै नाम निवासी है ब्रह्म ब्रह्म जोनी फिर आया आप भूला जा खसम भुलाया हर जियो मिले ता गुरमुख बूजै चीने शब्द अबनासी है काम क्रोध भरे हमें अपराधी क्या मुंह लै बोल है ना हम गुण ना सेवा साधी डुबदे पाथर मेल लै हो तुम।

दूजे लागा सब जग काचा, गुरमति सदा सच सलाही, साचे ही साच पति जय। तेरे गुण बहुते मैं एक न जाता, आपे लाए लए जग जीवन दाता, आपे बख्शे दे वडे आई, गुरमत एहो मन पी जय। माया लहर शब्द निवारी, एहो मन निर्मल हो मैं मारी, सहजे गुण गावे रंग राता।

अगै आया अंत काल क्या की जय जो सक लागे तिन साची सोए दूजै लागे मन मुख रोए।

एक सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, हौ मैं मार सदा सुख पाया, नाए साचै अमृत पी जाए, तिल बिख दुख निवारण हारा, गुरमुख सेवया।

0: गति राखन को समरथ क्या हूँ कथि कथे कथ देख मैं अकथन कथन जाई जो तुद पावे सोई अख तिल तेरी वड्याई एकंकार सतगुरु तह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह बिघन विनाशन सोए तुदे आ गए अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कौ नानक सब तेरी वड्याई कोई नान जाने मेरा कौ नानक सब तेरी वड्याई कोई नान जाने मेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

भगत आत्म कह जाए, प्रभु अपने सिर रहे समाए। जो हुआ होवत सो जाने, प्रभु अपने का हुकुम पछाने। किसकी महिमा कौन

संग सतगुर तन तनो तन तन तनो जित मिल हर बुलग बुलगिया सब कहो हर हर हरे हर हर हरे हर बोलन।

0: अज्ञास्थत सहोह मन है निदान लहोह सुखे समाये मेरे मन
1: सुखे समाये मेरे मन।

स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फोन स्मार्ट फ

0: पाल सर्वस्व संत का नाम मुख्य ज्ञान में होनी खाए गजता पहला पहला
1: सुधुरा

वीर प्राण सिंह रसद आखर किन्ने राम नाम की आखर किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी ना आवै काकी एक है दस तुहारो नानक उन संग मोह उधारो सुखमनी सुख अमृत तब नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ का सिमरन गर्भ न बसै प्रभ का सिमरन दुख जम नसै प्रभ का सिमरन काल पर है प्रभ का सिमरन दुश्मन तरै प्रव सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ का सिमरन अन दिन जागै प्रभ का सिमरन भव न व्यापै प्रभ का सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन सार कै संग सर्वनि धान नानक हर रंग प्रभ का सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध प्रभ का सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ का सिमरन जपता पूजा प्रभ का सिमरन बिनसै दूजा प्रभ का सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ का सिमरन दरगह मानी प्रभ का सिमरन होए सुफला प्रभ का सिमरन सुफल फला।

कृष्णा बुजा प्रभु का सिमरन सबसे सुजय प्रभु का सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु का सिमरन पूर्ण आशा प्रभु का सिमरन मन की मर जाए अमृत नाम रित माहे समाए प्रभु जी बसे साध की।

0: नानक के प्रभु सास अष्टपदी
1: यह मात पिता सतमीत न पाई मनुहा नाम तेरा संग सहाई
0: जह महा भयान दूत जम दलै तैं केवल नाम संग तेरे चलै
1: जह मुश्किल होवै अत भारी हर को नाम गिनवाहे उधारी
0: अनख पुनः चरण कट नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै
1: गुरमुख नाम जपहु मन मेरे नानक पावहु सुख कनेरे
0: सगल श्रेष्ठ को राजा दुखियार का नाम जपत होए सुखिया
1: लाख करोरी बंद न परै हर का नाम

कहे हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परमंगत पाई है। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तहें पार पुराही। अनक बिघन जहें आए संहार है, हर का नाम तत्काल उधार है। अनक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। हौं मैला मल कहो न धोवै, हर का नाम कोट पाप खोवै। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाई है।

अजकर्त संत दिन रात हर हर अवसाद कुमात। अजन कह नाम निधान पार ब्रह्मजन कीनो दान। मन तन रंग रिते रंग एक नानक जन कह बिरध विकै। हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर का नाम जन को तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परै ना भंग। हर का नाम जन की वडियाई हर का नाम जन शोभा पाई।

कै मालक जीना हर तन जन को आवरव दीना हर हर जन कै ओत स्थानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते तरे पार जाते हो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुष्ट सब नसै संत का संग बड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल कछ अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेके सर्व संढोल पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म क्रम क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुण्य दान हो मैं बहु रतना शीर खटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करै बहु भांति नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार नौखंड पृथ्वी फिरै तिर जीवै महा उदास तपीसर थीवै अग्नवाए होमत प्राण कनक असब है वर भूम दान नौली कर्म करै बहु आसन ज्ञान मार्ग संगम अत साधन निमख निमक का सिर कटावै तौपी होमै मैल न जावै हर के नाम सम सरकश नाही नानक गुरमुख नाम जब सकत पाही मन कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ मानना मन ते हुटै सोच करै दिनस अर रात मन

बहुत त्याण पर जम का भव व्यापै अनक रत्न का त्रिशन्ना त्रापै एका नेक अगन नहीं बुझै कोटो पाव दर्गा नहीं सुजै छूटस नाही उब पय आल मोय व्यापै माया जाल अवर का तुर सगली जम डान।

सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मतमल हिरिया सगल उद्दम मह उद्दम भला हर का नाम जपहु जी सदा सगल वाणी मह अमृत बानी हर को जस सुन

जय। ये प्रसाद का रूप सुख बस है, सुत प्राप्त मीत बनिता संग हस है। ये प्रसाद पीवा शीतल जला, सुखदायी पौन पाव के अमला। ये प्रसाद भोग्य सब रसा, सगल समग्री संग सास बसा। दीन हस्त पाव कर नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना। ऐसे दोख मूल अंध बे आपे, नानक

अंग जतन करा तो पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत उहां उत्गमन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय सो आवे न तीत जो बैराई ता सो प्रीत बलुआ के गृह पीतर।

पूछा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुमसे हुए सो आज्ञाकारी तुमरी गतमर तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक दिन हार प्रभ छोड़ कर लग है आन सो आए नानक कहूँ नसी जई बिन्ना मैं पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पा

मन हर के नाम की तीर्थ सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन धन को टंब सवाया मिथ्या हो मैं ममता माया। मिथ्या राज जोगन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रस हसी अश्व वस्त्र मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता। मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आप सुपर कर्त गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीव हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हस्त पर दर्द को हृदय। मिथ्या नेत्र पेखत पात्र रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर बेकार कौ धाव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा। बिन बूझे मिथ्या सब भय सफल देह नानक हर हर नाम लय। मिथ्या साकत की आजा साज बिना कह होवत सूचा। बिरसा नाम बिना तन अंध मुख आवत ता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बिरसा बिहाय मेघ बिना ज्यों खेती जाए। गोबिंद भजन बिन बिरसे सब काम ज्यो कृपण के निरारस धाम। तन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ। रहत अवर कच अवर कमावत मान नहीं तीर्थ मुखों गंड लावत। जानन हार प्रभु प्रवीन बाहर भेख न काहू भीन अवर उपदेश।

ब्रह्म सब जाने अपना किया आप है माने आप है आप करत न वीरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नीरा उपाव स्याण सगल ते रहत सब कुछ जाने आत्म की रहत जिस पाव तिस लय लड़ लाए शांत नंतर है समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमुख निमुख जप नानक हरी।

नि प्रसाद शक्ति अमृत साहे तुम ठाकुर को रख मन माहे नि प्रसाद सुगंध तन लाव है तुस्को सिमृत परम गत पाव है नि प्रसाद वस सुख मंद सत्याय सदा मन अंदर जिहे प्रसाद गृह संग सुख वसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जिहे प्रसाद रंग रस भोग नानक सत्याय ध्यावन जोग जिहे प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है तिस त्याग कत अवर लोभाव है जिहे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ताका जस गावी जय जिहे प्रसाद तुझ सब को मान है मुक्ता को जस रसन बखान है जिहे प्रसाद चिरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल

ये प्रसाद तेरे सगल सिदर ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके। ये प्रसाद को ना पहुचे मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे। ये प्रसाद पाए दुर्लभ देहि नानक ताकी भगत करहि। ये प्रसाद आपूखण पहरी जय मन तुस सिमरत क्यों आलस की जय। ये प्रसाद अश्वहस्त अश्वारी मन तिस प्रभ को गभु न बिसारी। ये प्रसाद बाग मिलक धना राख पोए पव अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई। उठत बैठत सर तिसै त्याय जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखै। ये प्रसाद कहे पुन बहुदान मन आठ पैर।

जिहें प्रसाद सुनै कन्नाद, जिहें प्रसाद पेखै विस्माद, जिहें प्रसाद बोलै अमृत रसना, जिहें प्रसाद सु सहचे बसना, जिहें प्रसाद हस्त का चल है, जिहें प्रसाद संपूर्ण फल है, जिहें प्रसाद परमगत पाव है, जिहें प्रसाद सु सह समाव है, ऐसा प्रभु त्याग और कत लागू, गुरु प्रसाद नानक मन जागो।

प्रभु सोपल सनब सहमन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सब निधान प्रभु तेरी मया, आपो कृष्णा किन्हू लया। जित जित लाभ तित लगे हर नाथ, नानक इनके कछुना हाथ। श्लोक अगमागार पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, सार्जना की अचरज कथा अष्टपदी। सारग संगमुख उजल होत, साध संगमल सगली कोत। सारग संगमट अभिमान, सारक संग प्रगट सो ज्ञान। सारक संग बुझ प्रभ नीरा, साध संग सब होत नबीरा। सारक संग पाए नाम रतन, सारक संग एक ऊपर जतन। सारकी महमा बन कौन प्राणी, नानक सारकी शोभा प्रभ माहि समानी। सारक संग गोचर मिले, सारक संग सदा प्रफुल्ले। सारक संग आवह बस पंचा, साध संग मुतरस पुंचा। साध संग हुए सब कीरेन, सारक संग मनोहर बैन। सारक संग न कतम उतावे, साध संग स्थित मन पावे। सारक संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

ताप, सारक संगत जस व्याप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। सारक संग न कबहू तावै, सारक संग सदा सुख पावै। साध संग बसै गोचर लहै, साधु कै संग अजस है। सारक संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुचै। सारक संग दृढ़ सब धर्म, सारक संग केवल पार ब्रह्म। सारक संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। सारक संग सब कुल उधारै, साधु संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै। साधु कै संग सो तन पावै, जिस तन च सबको वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, सारक संग सो बसुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साधु संग अमृत गुण गायन। सारक संग सर्वथान गम, नानक सारक संग सफल जनम। सारक संग नाही कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। सारक संग कलुखत हरै, सारक संग नक पर हरै। सारक संग इहां उहां सोहेला, साध संग बिछरत हर मेला। जो इच्छा सोई फ

गुण गाओ। सारक संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। सारक संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट दीठा। साध संग पय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी। सारक संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। सार की महिमा वेद न जानै, जेता सुनै तेता बख्यान है।

की नाम ब्रह्म ज्ञानी के सब उपरमया ब्रह्म ज्ञानी से कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा सौंदर्य ब्रह्म ज्ञानी की रिष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मोता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जूता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक

संधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी का होए सो फला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी का एक है रंग, ब्रह्म ज्ञानी का बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सदजागत, ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है।

परमगत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग, मंते बिनते सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म। सार संग पापा मल खोवै तिस भगवती कीमत उत्तम होवै। भगवंत की टैल करै नित नीत मंतन अर्पै विष्णु प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पावै। सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म मै सोधै। राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै। वेद पुराण सिमरत बूझै मूल सूखम मै जानै अस्तूल। चहु वरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चहु वरना मैं जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावै जन कोए। कर कृपा अंतर उधारै पत प्रेत मुगत पासर कौतारै। सर्व रूप का औषध नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जोत कित न पाइया धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर करम। जिसके मन पार भ्रम का निवास तिसका नाम सत राम दास। आत्म राम तिस नदरी आया दास संतन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान सो दास दर्ग है प्रवान। अपने दास को आप कृपा करै तिस दास को सब सो जी परै। सगल संग आत्म ओ दास ऐसी जुगत नानक राम दास। रब की आज्ञा आत्म हित आवै जीवन मुक्त सोग कहावै। तैसा हरक तैसा उस सोग सदा आनंद तह नहीं वियोग। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान। जुगत साहे साहे जुगत नानक हो।

पसरियो आप होय अनंत रंग, लखी न जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। श्लोक उस्तत करह अनेक जन, अंत न पारावार। नानक रचना प्रवृति, बहुविध अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पूजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रमय उदासी। कई कोट वेद के सोते, कई कोट तपीसर होते। कई कोट आत्म ध्यान धार हैं, कई कोट कब का विचार हैं। कई कोट नव तन नाम त्याव है, नानक करते का अंत न पाव है। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिग आत्म ने कोर। कई कोट पर दर्भ को हिर, कई कोट पर दुख न कर। कई कोट माया श्रम माए, कई कोट पर देश प्रमाए। जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी। कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए। कई कोट पौन पानी बैसंतर, कई कोट देश को मंडल। कई कोट सत्य सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र। सगल समग्री अपने सूत धार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत अरसास। कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण तीवे। कई कोट जक्ष किन्नर पे साच, कई कोट भूत पेतु कर मृगाच। सबसे नेरा सब होते दूर, नानक आप अलिप्त रहया भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी। कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है। कई कोट बैठते ही खाहे, कई कोट काल है सक पाहे। कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मह चिंत। जह जय पहाना तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाथे। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी। कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते। कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश। कई कोट मांग है सतसंग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनको हुए आप सो प्रसन्न, नानक तेजन सदा धन धन। कई कोट खाणी अखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड। कई कोट होए अवतार, कई जगत की नो विस्तार। कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एक अंकार। कई कोट की ने बहु पांत, सबसे होए प्रभु महा।

काम है, आत्म रस सहज समाव है, अपने जन को साथ साथ समारे, नानक ओए परमेश्वर की प्यारे। श्लोक करण कान प्रभु एक है, दूसरा नाही कोए, नानक तिस बलिहारण जसन महियल सोए। अष्टपदी करण करावन करण जोग, जो तिस पावे सोई होग, तन्मै तापो तापन हारा, अंत नहीं किस पारा वारा। हुक्मे तार अधर रहावे, हुक्मे उपजा हुक्म समावे, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार। कर कर देखे अपनी उडियाई, नानक सब मह रहया समाई। प्रभु भावे मानुक गर पावे, प्रभु भावे तापा फिर तरावे, प्रभु भावे बिन सास ते राखे, प्रभु भावे ता हर गुण पाखे, प्रभु भावे ता पतत उधारे, आप करे आपन विचारे। दोहां सिरियां का आप स्वामी, केले बिकते अंतर जामी, जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे। कहो मानुक ते क्या हुए आवे।

अपने आप बचाए, पर मैं भूला दैद सावै, निमुख माहे चार कुंट फिर आवै, कर कृपा जिसे अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले। किन मैं नीच कीट कौ राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कछु ना आवै, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै, जाको अपनी करै बख्शीश, ताका लेखा ना गणै जगदीश, जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनते आप बनाई, नानक जी वै देख बढ़ाई, इसका बलना ही सहास, करन करावन सर्व को नास, आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस पावै सोई पुन सियो, कभू ऊंच नीच मह बसै, कभू सोग हरख रंग हसै, कभू निंद चिंद व्योहार, कभू ऊब आकाश पयाल, कभू बेता भ्रम बेचार, नानक आप मिलावन हार, कभू नृत्य करै बहु भांत, कभू सोए रह दिन रात, कभू महाक्रोध विकराल, कभू सर्व की हो सरवाल, कभू होए बह बड़ राजा, कभू पेखारी नीच का साजा, कभू अपकीरित मह आवै, कभू भला भला कहावै, ज्यों प्रवरा कहते भी रह, गुरप्रसाद नानक सच कह, कभू होए पंडर करे बख्यान, कभू मोन तारी लावै ध्यान, कभू तट तीरथ स्नान, कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान।

जब लग जाना मुझसे कष्ट हुए, तब इसको सुख नाही कोई। जब ही जाना मैं किस करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग नेचर नाही चीत। जब लग मोह मगन संगमाए, तब लग धर्म राय दे सजाए। सब कृपा ते बंधन टूटै, गुर प्रसाद नानक हों छूटै। सहस कटेलह को उठतावे, तृप्त न आवे माया पाचै पावे। अनक भोग बिछिया की करे, न तृप्त आवे खप खप मरे। बिना संतोख नहीं को राजै, सपन मनोरथ बिरसे सब काजै। नाम रंग सर्व सुख हुए, बड़ भागी किसे प्राप्त हुए। कर्ण करावने आपे आपो, सदा सदा नानक हर जापो। कर्ण करावन करने हार, इसके हाथ कहाँ विचार। जैसी दृष्टि करे तैसा हुए, आपे आप आप प्रभु सोए। जो किसी किन्नो सो अपने रंग, सबसे दूर सब हूँ कै संग। बूझे देखे करे विवेक, आप है एक आप है अनेक। मरे न बिनता आवे न जाए, नानक सद ही रहया समाए। आप उपदेश समझाए आप, आपे रचिया सब के साथ। आप कीनो आपन विस्तार, सब कछ उसका ओकर नहार। उससे पिन कहो किच हुए, शांत नंतर एक कैस हुए।

संत कै दुखन सान प्रगट होए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी करै। संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै। संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए। संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै, संत कै दुखन सब कुछ चलै। संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच ने चाए। संत दुखी का सौ को नाही, नानक संत भावे सोए भी गत पाही। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिंट गन्ना पाई। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन। संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बेजोग। संत की निंदा दोख मह दोख, नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख। संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसै का नहीं मित। संत के दुखी कौ डाण लागै, संत के दुखी कौ सब त्यागै। संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी। संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुखना सुख से टर।

मंतन मुख बोलै हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछानै, हित उत की ओह सो जी जानै, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्हें निरंजन जानिया, गुर प्रसाद आ

एक ऊपर जिस जन की आशा, जिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसह न लागे दूख। जिसको हर पव मन च प्यावै, सो संत सुहेला नहीं डोलावै। जिस प्रभु अपना कृपा करै, सो सेवक को किसते डरै। जैसा साथ ऐसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया। शोधत शोधत

अनक ज्योत रच साप ओ साप अबनासी नाही किस खंड सारण सार रहो ब्रह्मांड अलख अभेव पुर

साध सेवा वड भागी पाई, साध संग हर कीर्तन गाई, अनक बिगन से साधु राख, हर गुण गाय अमृत रस चाख, कोट गही संत दर आया, सर्व सुख नानक तेह पाया, मृतक कौजी।

सर्व शोक सुनिए करता कह। राज मह राज जोग मह जोगी, तप मह तपीस गृहस्त मह भोगी। त्याय त्याय पर सुख पाया, नानक तिस पुरुष का किन।

पूजनी तिसके अस सानु जैसा जनाव तैसा नानक जानू। नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेद करें एक रंग।

रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करणी निर्मल निर्मली, जिसै बुझाए तिसै सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जाकर रह प्रवेश, सत नित बूझे जे कोई, नाम जपता की गत।

नानक सो सेवक सास सास कुमार है। अपने जन का पर्दा काके, अपने सेवक की सर पर राखे। अपने दास को देव डाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आप पत राखे ताकि

जिन्होंने अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व सुख का दाता, जिसकी सर्व सर्व सुख पाव है, जिसका दस का पाप मिटाव है, अवर से

सेवा करत हुए ने कामी, जिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस विश्वे गुर का मन मान, हो सेवक परमेश्वर की गत जान, तो सतगुर जिसके दहर नाओ, अंक बार गुर कौ बल जाओ। सब निधान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम। सैस से आन पल न जाइए, नानक ऐसा गुरबड़ भागी पाइए, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत, पेखत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुनकर बचन करन आघाने, मन संतोह आत्म पति आने, पूरा गुर अखयोजा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेखा हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए, यह बा एक सत अनेक सत पुरख।

की कीमत किन न पाई, अनक भगत बंधन नित कर है, चरण कमल हिरदा सिमर है, सद बलिहारी सदगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावै जन कोए, अमृत पीवै अमर सोहोए, उस पुरख का नाही करे विनाश, जाके मन पर के गुण तास, आठ बैर हर का नाम ले, सच उपदेश देव को दे, मोह माया का संग न लेप, मन में राख हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परम मोहतुभ तैसे नासे, सौत माहे ठांड वरदाई, आनंद भया दुख नाठे पाई, जन्म मरण के मिटे अंधेसे, साधु के पूरन उपदेशे, पहुँचू का निर्पोह बसे, सगल ब्याल मन ते खै नसे, जिसका साधन कृपा तारी, साधु संग जप नाम मुरारी, चित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन, निर्गुण आवसा गुण भी ओही, कला तार जन सगली मोही, अपने चित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए, पोत पोत रवे आरूप रंग, भय प्रगास साद कै संग, रचरत ना अपनी कलधारी, अनक वार नानक बलिहारी श्लोक, साथ न चाले बिन भजन, विसिया सगली चार, हर हर नाम कमावना, नानक हो तन सार अष्टपदी।

अनहारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंचत नानक फल पाए संग न चाल तेरे थना तू चाल पटाव है मूर्ख मना सुत मीत को टंब अर बनिता हिंते कहो तुम कमन सनाता राज रंग माया विसार हिंते कहो कमन छुटकार अस हसी रथ असवारी झूठा डंप झूठ पासारी गिन दिए तिस बुझे नाम बेगाना नाम विसार नानक पहचाना गुर की मत तूले ए आने भगत बिना बह डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम अहरो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म से किल बिख जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार भूत सत हर को नाओ चाहे सुभाए नानक गुण गाओ तेरी उतरस मैल बिन सजाए हों मैं बिसु फैल ओहे अचिंत बसै सुख नाल सासग राज हर नाम संभाल चाड से आनप सगली मना साल संग पावै सत धना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दर गह जयकार सब निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको साल आहे एक सिमर एको मन आहे एक के गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हरे आप पूर्ण पूर रहे प्रभ व्याप अनक विस्तार एक ते भय एक आराध पराशत गए मंथन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक।

लौकी दृष्ट महा सुख होए हरस पावे बिरला कोए जिन चाक्षा से जन त्रिवताने पूरन पुरख नहीं डोलाने सुभर भरे प्रेम रस रंग उपजा चाओ साधक संग परे शरण आ।

गुरप्रसाद को विरला लाके, सोखों विस्या जीव से काढ़े, जन्म जन्म का टूटा गांडे, गुर पूरे तत यह बुझाया, तब अपना नानक जन से आया, साजन संत करो यो काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावहु, आव जपहु अवरह नाम जपावहु, भगत भाए तरी संसार, बिन भगति तन

सर्व समाए सब बखशंद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कथा कर्त प्रतपाल आदि पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सोहे पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीत अजान नानक कुमरी सन पुरुष भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोह पाए एक निमक हर के गुण गाए अनक राज भोग डियाई हर के नाम की कथा मन पाई मोह भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत फलि तो कारणी शोभा हृदय बस पूरन गुण।

जब धारी आपन कुन समाद, तब बैर विरोध के संग कमात। जब इसका वरण कहे नांगापत, तब हरक सोग को कहे व्यापत। जब आपन आप आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत भरम। आपन केल आप वर्तीजा, नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल धनी, तब बंद मुक्त कहो किस को गनी। जब एक हर अगम अपार, तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सवाए, तब शिव सगत कहो कित छाए। जब आप है आप अपनी जोत धरे, तब कवन निडर कवन कत डरे। आपन चलित आप कर नहार, नानक ठाकुर अगम अपार। अब नाश सुख अपने आसन, चाहे जन्म मरण को कहाँ बिनाशन। जब पूरन का तब रह सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत ओ चिर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ नरंजना गोचर आगादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे। आपन आप ही है चर्जा, नाक आपन रूप आप ही हो प्रजा। यह निर्मल पुरुष पुरुष पत होता, कह बिन मैल कहो क्या तोता। यह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन को मान कौन अभिमान। यह स्वरूप केवल जगदीश, तह शल शिदर लगत कहो कीस। यह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तह किसह भू कमन त्रिपतावे। कर्ण कराम करने हार, नानक करते का नाहे तुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कौन माए बाप मित्र सुत भाई। जह सर्व कलाया पै प्रवीन, तह वेदक देव कहाँ को चीन। जब आपन आप उधार, तो सगन अब

जय पसरह पासार संत प्रताप धू पास का आपके धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आप है कौतुक कर अनद चोज आप है रस भोग निर्जोग जिस पावे तुझे आपन नाय लावे जिन पावे तिन खेल खिलावे बेशुमार अथाह अगणित अतुल जो बुलावो त्यो नानक दास बोले श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको बसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथ आप सुन न हार आप है एक आप विस्तार जत पावे ता शिष्ट उपाय अपने भाने लय समाये तुमसे भिन्न नहीं किस होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभु जीओ आप बुझाए सत नाम सोई जन पाए तो समुंदा सीतर का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र सब ताक हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखा तिस कोय न मारे तो मूंगा जिस मनो विसार है जिस तक अवर कहाँ को जाए सबसे एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जान हो साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार।

अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तन का यह सुहाओ। आठ पहर का पेखो नेरा, मिटे अज्ञान बिनते अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। हलत पलत दोय लेहो सवार, राम नाम अंतर उधार। पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसे तिस साच परीखिया। मंत्र नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते

को जाए, उबरै राखण हाल से आए, निरपो जपै सगल भव मिटै, सब कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दुख, नाम जपत मन होवत सुख।

कहो कि न कष्ट करा, आप भला करतु ते अतनी की, आपे जाने अपने जी की, आप साज सारी सब साच, ओत पोत अपन संग राच, ताकि गतमित कहीं न जाए, दूसर होए तो सोची पाए, जिसका किया सब प्रवान, गुर प्रसाद नानक इहो जान, जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभु सोए, ओ धनवंत कुलवंत पतिवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया, जिस पर साल सब जगत तराया।

बनारस की तप करे उलट तीर्थ मरे अगन देहे काया कल्प की जय वड्डे तो वड्डा कोई कर्म कांड जप तप कर लवे कीर्तन दे तुल कुछ होर नहीं हो सकता। कीर्तन प्रधान भक्ति है और प्रधान भक्ति तो जदों आत्मा होर उची उडारी मारेगी तो फिर बैराग भक्ति सुल्तान भक्ति हृदय च वसती है। महाराज कहते हैं ये जप संयम तीरथ उन्हों युगों का धर्म है जिन्हां युगों विच मनुख दी लखां बरस आईओ होंदी सी फिर हजारां होई हुण तां थोड़ी जिही आईओ है। महाराज कहते हैं कि कल में कीर्तन हर नाम युगो युग आपो अपना धर्म है सोध वेखो वेद पुराण। कोई बनारस की धरती से तप कर लवे उल्टे हो गए अनेक जन्म। तीर्थ से मर जावे तप करदा करदा अनेक जन्म इसे तरह तप करदा रवे अगन देहे काया कल्प कीजे आ धर्म स्थाना ते तीर्थां ते जाओ तां चारे पासे अग बाल के पंजवीं अग सूरज नू मन के कई तपस्वी अपने शरीर नू कष्ट दे रहे होंदे हन भई साडी काया कल्प हो रही है। महाराज कहंदे ने इह वी कर लवे अश्वमेध जग वी कर लवे सोना गर्भ दान कीजे आ पेठे नू पाड़ के ना बीज कड़ के विच सोने दिया सिरफियां पार के फिर बंद करके किसे नू दान कर देना ए गर्भ दान है। ऐसे दान वही तू नित करदा रवे ते जो एक कड़ी सत संग दे विच बह के तेनू प्राप्त होना है ना ओ सौ युग भी तू लगा रवे ओ प्राप्त नहीं हो सकदा। इसलिए ये सत संगत का वैकुंठ जिन्हां नूं नसीब है वड्डियां पागां वाले हो आप समाप्ति का समा हो चुका है तां वैकुंठ क्योंकि मैनू ये वैकुंठ के दर्शन होए हैं इसलिए ये शब्द आप जी की भेटा कीता है। ये आपे वाहिगुरु बख्शिश करता है आपे श्रद्धा लाउंदा है तां इस सत संगत के वैकुंठ का मनुख पूर्ण आनंद माण सकदा है। तो आओ सारे प्यार नाल इन्हां तुकां नूं पढ़ो फिर कीर्तन समाप्ति।

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह स्वा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हैं कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

हर चरण कमल की देख, सतगुरु दित्ति तुष्ट है बलराम जी। तन मिल सकता है, दुनिया की शोहरत मिल सकती है, ऐ बाबा नानक तेरे चरणों का प्यार, तेरी संगत विच बैठ के नाम दे उलारे, तेरे चरणों की असीस उनू मिलती है जिदे ते तुसी बहुत खुश होंगे। माई चरण गुरु मीठे बड़े पाग देवे परमेश्वर। अज बाबा नानक जी के चरणों के शीश नवाल वास्ते तुसी आए हो, बड़े पागा वाले हो। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी विच कह रहे हैं, आओ सारे।

कर दिसके बलराम दी मेरे गुरु नानक दे कर सारा कुछ है। कोई दाता मांगदा है ओनू दाता मिलदियां ने ते प्यारियो कोई दाते नू मंग लवे ओनू दाता भी मिल जाता है। महापुरुषां दे वचन तिया पुत्र मंगे ओ मिल गए धन दौलत मंगिया ओ मिल गया सोहने कारोबार लई अरदासां कीते ओ भी हो गए। ऐ पलिया जे किते गुरु नानक नू मंगिया हुंदा तैनू ओ भी मिल जाणा सी। जे गुरु नानक नू मंगिया आओ पांच सत मिनट की हाजरी दसरिया की जी समा है उपरंत फिर समाप्ति है। जिन्हां ने गुरु नानक मंगया है उन्होंने गुरु नानक भी मिलया है। अज मेरे बाबे नानक दे घर बहुत संगत कठी हुई है सारी बरादरी बैठी है ते रिश्तेदार की कहते मोरे दोनों पुत्र श्री चंद लक्ष्मी दास जी बैठे नानक ऐ तेरा पुत्र श्री चंद बैठा है आ लक्ष्मी दास बैठा है इना नू छड़ के सारा कुछ लेना जी दी चोली विच पान लगा है वो तेरा की लगता है। तुसी इतिहास में चल सको चल कमल की देख।

0: ऐसा सच साजन अलकूना लखमया लगे दिसू सारा च
1: सिन्ना विच जो सिखांदियां न गैरता ही ये मार गे जमा सूर में बना नु जेड़े बंदे कैरता जोश भर दया नम
0: ओ रही ना शर्म जिन्ना दियां अखां च पुज के नकारा च ऐसा सिख साजन

0: ऐसा सच साज नालूकूना लखमया लग दिसू सारा च
1: सास भूत दस तार सिरां ते रखण केस दाड़ियां हौसले बुलंद

0: बाबू जी हंस ने जड़ा तो दंता नु छड़ी न कमी छंद में
1: ओ रस ले लो वीर लो नफा की अखा गफा में रस ले लो वीर लो नफा की गफा में काफिया करारा चो काफिया करारा चो ऐसा सच साज नाल कूला लखा में अलग सुसारा चा
2: किसे भी कर्म नू जो करना हो सब तो पहलो उस कर्म का जोड़ा नक्शा है मनुख के दिमाग में बनता है। किसी भी नवे प्रोजेक्ट में शुरू करना हो किसी नवे कारोबार में शुरू करना होवी कोई घर की बिल्डिंग बनानी हो नवा कोई कौमी महल उसारना हो सब तो पहलों जोड़ा नक्शा है मनुख के दिमाग अंदर बनता है। इस तो बाद फिर वो वास्ते की चाहिए वो सोच जी अगे चलती है फिर वो नेपरे चाण लिये की करना पैना फिर यह भी सोच चलती है फिर वह कर्म शुरू होंगे फिर उस कर्म के सब कुछ जोड़ा प्रगट होना शुरू होंगे। सतगुरु महाराज कुछ समा आनंदपुर साहब की धरती उत्ते वीर रथ के सन आल दुआले गल चलती सी क्योंकि जो सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज कुछ समा चुप रहे ते परिवार ने घरदिया ने वैद लिया ते उस वैद ने सतगुरु महाराज जी की बांह फड़ी आन के नब्ज पड़ी ये सतगुरु महाराज जी की पावन बाणी अंदर जिहड़ी तुहाडे नाल मैं विचार सांझी कर रहा इस बख्शिश की सतगुरु महाराज ने वैद बुलाया वैदगी पकड़ ढडोले बाहे भोला वैद ना जाने करक करे जे माहे भाई वैद जिहड़ा उन्हें तो बांह के उत्ते हाथ रख लिया ते बांह ते हाथ रख के नब्ज वेख रहे भाई बीमारी की है पर सतगुरु महाराज कहिंदे ने भाई इस भोले वैद नूं पता नहीं भाई ये बीमारी कोई तन दी नहीं जिहदे नाल ये नाड़ फड़ के लभ लवेगा ये बीमारी है अंदर दी ते है ओ भई इस संसार दे विच जेड़ा दुखी होए लोग ने उन्हां दी बांह किवें फड़ी जावे ये गल्लां वैद दे लभण तो बाहरियां सन और यही अवस्था सी उस वेले दसवीं जोत सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी जदों आम लोगों नूं पता लगा दो पंडित केशव दास ते कालीदास सतगुरु महाराज दे चरणां विच आए कहण लगे महाराज सानू पता लगा है भाई तुसी कोई वीर रस विच रहिंदे हो वराग रस विच रहिंदे हो ते तुहानू चंडी प्रकट कर देने हैं देवी प्रकट कर देने हैं जिहड़ी तुहाडे सारे मसले आपे हल कर देवेगी तुहानू लोड़ ही नहीं पैंदी तुहानू तलवार दी मुठ ते हत्थ दी हत्थ पाउण दी लोड़ नहीं तुहानू कोई कर्म करन दी लोड़ नहीं आपे ही देवी तुहाडे सारे कम कर देवेगी प्रगट कर देंगे तुहानू। सतगुरु महाराज कहण लगे देवी प्रगट किवें होवेगी कहण लगे जी 1.25 लाख की समगरी लगेगी ते नैणा देवी दे टिले दे उत्ते असीं होम जग करांगे ते जिहड़ी देवी उह प्रगट हो जावेगी। सतगुरु महाराज कहण लगे कोई गल नहीं 1.25 लाख की समगरी दे दिंदे आ। सतगुरु महाराज पूरी तरह जाणदे सन भाई ये मूर्ख लोग जिहड़े ने ये जंतरां मंत्रां विच विश्वास रख के लोगों नूं बुद्धू बनाउण वाले ने कदे भी देवी देवते जिहड़े ने उन्हां ने मनुख नूं आजादी नहीं दिवाउणी मनुख नूं आजादी लैण वास्ते संघर्ष करना पैणा है। सतगुरु महाराज कहिंदे कोई किसी को राज ना दे है जो ले है निज बल से ले है किसी नूं कोई राज दिंदा नहीं झोली विच पा के जंतरां मंत्रां नाल राज कायम हुंदे होण ते बहुत सारे लोग जिहड़े सन ओह गुफावां विच बैठे ही अपने राज भाग कायम कर लैंदे समें समें जे इनकलाबी आवाज उठाई किसी फकीर ने तो फिर तो किसी का तख्त डोलिया होगा तो जे अंदर बह के अपना वो किसी राज के खिलाफ बगावत करन दी अपने दिल में जिन्ना मर्जी वड्डे पाठ करी गया होगा किसी का कुछ नहीं बिगड़िया। हुण ये दो पंडित जिहड़े सन इन्हां ने आख्या महाराज 1.25 लाख की समगरी लगेगी 3 महीने का समा लगेगा। सतगुरु महाराज ने 1.25 लाख की समगरी दे दी इन्हां नूं इन्हां नैणा देवी दे टिले दे उत्ते जा के जिहड़ा जग सी शुरू कर दिता 3 महीने लंघ गए सतगुरु महाराज ने सुनिया कल्या भाई जाओ केशव दास ते काली दास तो पुछो भाई जिहड़ी देवी है प्रकट हो गई है। जदों उन्होंने जाके पुछया कहण लगे पखंड होर रच दिता भाई देवी अजे प्रकट नहीं हुई तीन महीने का होर समा लगेगा तो इन्नी समगरी होर लगेगी। उन्होंने मतलब सी भाई अगे बहुत वड्डी समगरी लगी हुण होर लगेगी तो सतगुरु महाराज ये तो खड़ा छड़ा जाणगे साडी बल्ले बल्ले रह जाएगी समगरी नहीं आई तो देवी कादे नाल प्रगट होनी सी चंडी कादे नाल प्रगट होनी सी। हुण दूजी वार जदों फिर समगरी देती तो जदों समा जिहड़ा सी पूरा हो गया सतगुरु महाराज ने सुनिया घल्या भाई जाओ उन्हां नूं कहो हुण प्रगट हो गई है। जदों महाराज ने सुनिया भेजिया तो कहण लगे भाई प्रगट तां हो जाणी सी अड़िका बहुत तगड़ा बणिया उहदा हुण तक। सतगुरु महाराज दे सिंघां ने पुछिया भी की कारण की है क्यों नहीं प्रगट हो रही। कहण लगे जी बली चाहीदी है बली किसे पवित्र सीस दी होवे तां इह प्रगट होवेगी जिहड़ा विच जिहड़े ग्रह ने उन्हां दी इकसारता नहीं बन रही ते उन्हां दी इकसारता वास्ते बली देनी पैणी है। हिंदुस्तान दे विच बड़ियां बलियां दित्तियां जांदियां रहियां हुण तक लोग अपने बच्चों की बली दे दिंदे ने भुल्ले भटके लोग जिहड़े गुरमत तों हीणे ने ज्ञान की गल कितों सुनी नहीं किसी के कह कहे दे उत्ते देवत्यां नूं खुश करन वास्ते अजकल भी इहो कुछ हो रहा है। हुण इह कहण लगे महाराज बली देनी पैणी ते बली भी किसे पुत्तर सी सी इशारा इह सी भाई जदों सतगुरु महाराज कोल पंडित आए सन ते उन्होंने फरियाद की ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज ने आख्या भाई कोई पवित्र सीस इन्हां दी जिहड़ी धर्म की हो रही बेवदी उन्हूं रोकण वास्ते अपना बलिदान देवे अपनी शहीदी पावे फिर इन्हां दी बांह फड़ी जा सकती है। ते सतगुरु महाराज ने कह दिता सी भाई पिता जी तुसीं इहदों वड्डा परउपकार होर की है अपनी सीस भेट करके इन्हां दा धर्म बचा दिओ। उदों सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज ने तोर दिता सी ते हुण जदों असीं कहांगे ते सतगुरु महाराज आप पेश हो जाणगे ते उन्हां दी इत्थे बली दे के काम ही नबेड़ दिता जाऊ। सतगुरु महाराज कहण लगे पंडित जी 6 महीने हो गए आ तुसां इस होम जग दे विच बहुत बंदगी कीती है ते तुहाडा हुण शरीर भी पवित्र हो गया तुहाडा सिर भी पवित्र हो गया हुण तुहाडी कल नूं इत्थे बली देवांगे ते तुहाडी बली तों बाद सारे मसले हल हो जाणे। रातों रात तंबू पाड़ के निकल गए। जदों ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਪੰਡਿਤ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਿਆ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਚੰਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸਨ ਚਾਹੇ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਚਾਹੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਚਾਹੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬਈ ਆਓ ਆਹ ਜਿਹੜੀ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਮਾ ਹਮਾ ਕੇ ਆਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਵਸਰ ਹੁਣ।

0: ते कठ होना पूरी आनंद बड़ा, ऐसा वैसाखी ते कठ होना पूरी आनंद बड़ा।
1: ते जात पात तो पासे रहना है, हर कोई आ सकदा ए सतगुर दा कहना है, हर कोई आ सकदा ए सतगुर दा कहना है।
0: ओ गुरु घर दा